0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
1: मोहब्बत समेट कर।
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: ठाकुर के समक्ष तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला हुए दिलेशी जी और मेरा बेशाम के सरहद शॉपिंग सेंटर वाला सरा हम समक्ष तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला हुए दिलेशी अलपुरे के समक्ष आवास को सुकुरी असगर कॉस्मेटिक चिनार मार्केट कुसा अलपुरे हाँ और शांगला की सुमंग आवाज को सुकुरी जमजम कॉस्मेटिक डेरो बाजार शांगला की मुख्तियार कॉस्मेटिक डेरो बाजार शांगला की और से बस सुमंग आवाज का दावा की एबटाबाद की सुकुरी सिंह ब्रदर्स और सनी शॉपिंग सेंटर मेन बाजार एबटाबाद वहीद गिफ्ट सेंटर मेन बाजार एबटाबाद और हरिपुर की सुमंग आवाज सुकुरी ग्रेस जन स्टोर शोका जन स्टोर मेन और से बस सुमंग आवाज का दावा की मंडी एबटाबाद की सुकुरी इंसाफ मेडिकल स्टोर वाला सर हम जुम तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला हुए दिलेशी खान मार्केट महाजर बाजार मतदान की सुमंग आवाज सुकुरी जी शहीदानो बाजार की अवयादा कशानी अल्पला प्लाजा की जी अवयादा कशानी चांद मार्केट की हम जमुग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला हुए शिवा मरदान की खजी और सुमंग आवाज कथे मरगरे के सुकुरी जमजम कॉस्मेटिक अलहरम मेगा मार्ट जमजम मेगा मार्ट अस्पताल रोड बानी और खाल किताल अलहक मार्ट वाला सर मुंडा किताला वही जान जन सोर तलाश की ग्रीन वेली फार्मेसी वाला सर दरोड़ की ग्रीन पैलेस फार्मेसी नसीम कॉस्मेटिक्स वाला सर और मैदान के असद सुपर स्टोर वर्षित कॉस्मेटिक हाँ और थाना मलकन की पुआ जन सोर से तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला हुए सुवाद किस्म का आवाज सुकुरी बादल जन सुमी बाजार सुहात हाजी अब्दुल जमील से भी ने बाजार सुहात आओ चकदरे की फैमिली कॉस्मेटिक मस्कारा कॉस्मेटिक्स वाला सर आओ बटखीले किस्म का आवाज सुकुरी खैबर जन स्टोर शाह हुसैन कॉस्मेटिक अयास खुशबू महल आवदावा किस्म का आवाज का सुकुर से बचरता हंगूपट बाजार के संगीत बाजार किस्म तमाम आसमानी प्रोडक्ट 735 दीजिए आरडीए खान के बाजार कला उमर प्लाजा के मास कॉस्मेटिक इंजनसो उमर जनसो शीख सुबह कारी जनसो मैन खरोठी प्लाजा फराबाद आओ से बस सुमंग आवाज का दावा किसू प्रचार से क्यूरी जवाद कॉस्मेटिक मेहर प्लाजा हिशाम कॉस्मेटिक मेहर प्लाजा एवी कॉस्मेटिक हाजी दिन उलासिफ सर बरदान रोडबानी दिन लवत मानसू की मरसू की डक मीराबाद की तंगी चार सदक की निशत की और मैशिक के लिए किनियाज मोहम्मद लाला सर और पर्श महल्ला की तासुल जमुग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स मिला हुआ कामरान मोबाइल वाला सर जी आओ से बस सुमंग आवाज का दावा की नौशहरा की सुकुरी अजमेरी फार्मेसी अजीज फार्मेसी वाला सर और तमाम पिशावर के उम आसमानी तमाम प्रोडक्ट्स मिला हुआ जी इनशाला कभी वफा सकान वफा का जुन वफा का सबाब और जुंदी पाली सबाब खुले प्रोग्राम सर साहब खिदमत की हाजिरी को तरक्की दो पर इकबल डॉक्टर इसरा जान इजाजत वर की दलू अल्लाह आसमानी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है, अमन है।
3: प्यार की एक दुनिया लेकर
2: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में
2: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

तो बिल्कुल जनाब दादे पे मटे शिशार या चार रेडियो मन बटाग्राम बात अवेले शी निजाम सईद और ताज तो सवेले शी दावत आज मुक्ता पखपल हुआ है जो मैसेज गा लेता अस्सलाम वालेकुम तासु सिंह है मंगता दा दा सॉन्ग प्ले के तू सद सजदसी मायापुर इंतजार यू लेला है माँ तेरा मन ना लेला खुशहाल हो से कोशिश पको माँ बता सुधा बोल दास यूली कही माँ से ना मुंग बे येरी बु का ना ना कही उसे के यो कस से दे मलुक नुम लीक का ना नो गलते है ना शाता अली पी उली के वर्षा ना गजे के खल कुछ वो कतले भी है रे दाव अब्दा वालों ली वनी शिवी दी वे मलुक ने हमलुक जोड़ शे जोड़ कर दे नो बिल्कुल ख्याल करो जी कल मैसेज करो है ना बिल्कुल वाजे हली के जी मंगा भी हूँ भी अपी हूँ ना कहियो ठीक की खताश लुगा ना नो वो लाख आबादी दा और दा खलक प्रोग्राम हो रही ना भैया मुंह सारा खान दी बना ना को खुशहाल हो से अस्सलाम वालेकुम बखैर अगली जारिफ शायम बहरा बांडे ना लादियो बखड़ेरा मना ना खुशहाल हो से चिता जो प्रोग्राम खामोश है सरा हो रही नो बिल्कुल जनाब जी उस्तासु रूर उस्तासु दोस्त उस्तासु मरगरे उस्तासु कशर उस्तासु मशर उस्तासु अमजोले अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग मामू जान सिंह आई एम मनाइल वालेकुम सलाम खैर दे शुक्र दे तासु सिंह है खैर से तुम खदे

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
1: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
3: रेडियो अमन नेटवर्क।

बिल्कुल जनाब नो परवान के बसा सो सर अगर पिछे पिछे दिया हम अलेगी कॉल दिलारी एस एम एस दिलारी बरा सता सो परवान की चीजें सर गढ़ुन गए कॉलिंग नंबर जम का बिल्कुल सिंपल दिस पर 997-310-400 बंदी और दगा रंगी पर 85-83 बंदी बा सा एस एम एस दबद प्रोग्राम से आगा जुड़ेगी खुड़बे आगा खल के कम से बड़े ग्राम तदा महल रा इंटरशी विधि रा दाखिल शिवी दिया गया भाई वेलकम खुश आमद दे जय नो पखेरा ले बोर दवाई और आगा खल के कम से बड़े ग्राम तदा महल बाहर तरफ आंदी अनोरो इलाकों तनोरो हेवादुनु ता नो आगे तब भाई बाय बाय टाटा पमखा मुख गुलुना और दगा दुआ सर अखबल मंजिल मकसूद खैर फैसला का तासुर सही वापस अखबल को रुन डके मंगले चीदी अगर शेख चले तासो अदा महल ड्राइविंग गवई और जमा आवाज हो रही तासो तब वायम जनाब ड्राइविंग बिल्कुल एहतियात सर गवई जका सासो जिंदगी सर सर अदनोर खल को जिंदगी चुक मदद दाहु मडी इज्जत अहमियत लेरी वही ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है अफसोस से एहतियात बेहतर है सो भी डर इज देर चिता पूरे एहतियात हो गई जान द पा रहे सही आगा खल का कम चिता सर मीना मोहब्बत लेरी तास्तर गुतूर ये चारो खाना मुस्तकबिल यही अगे द पार अखल जो डे जात ख्याल साथ आई जिक्र जनाब जो चिदा अनमोल दिन यो जिले मिलावी की ब्याह जो निश मिलावी दिले सो दी पूरे पूरे ख्याल साथ आगा सासू जिम्मेवारी जुड़ेगी ददी ने इलावा जनाब चा तबियत इलेक्शन ना साज अभी ना रोग अभी अगे तब वायु गेट विल सून जर दर टिक जनाब जिक्र जिक्र लता बीमार है नो खेसा बिल्कुल इंसान बीमार है कम कारून कबूल अखबल जान दारा अखबल इलाके दारा अखबल मशरान दारा अखबल चार पेर चल दारा अखबल रुखाना मुस्तकबिल दारा कारून खो प्रेगी दे इंसान खुरक दगा हम जड़ने की औरंगी जनाब इंसान कार रोजगार डेफिनेटली जड़ने की सर सर कम गुरु जनाब कम खलक सेहतमंद रूख हुई कम कारून कबूल अखबल जान दारा अखबल इलाके दारा अखबल मशरान दारा अखबल चार पेर चल दारा अखबल रुखाना मुस्तकबिल दारा नो बिल्कुल जनाब यकीन बेहतरीन अंदाज की आगे सेहत अदरवाइज इंसान तो बड़ी मुश्किल हर वक्त और हर सात सेहत मिलाउशी बाय द वे आनंद चाचा बर्थडे भी वायु हैप्पी बर्थडे टू यू मेनी मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जियो हजारों साल जिनाब और साल के दिन हो 50,000 साल तरीके सेलिब्रेट के बाई दिन आप जाकर खुशहालिया ने रागा ले दी खादिया ने रागा ले दी समाशुमान या माशुमान ने रागा ले दी अगर दगा खादिया ने दगा खुशहालिया ने डेढ़ डेढ़ मुबारक शाम अल्लाह दगा माशुमान या माशुमान रालवेशी राजलमेशी अगर कारूनों की तासु दबारे कम से तासु ददवी ने उम्मीद साथ है तवको साथ है एक्सपेक्टेशन साथ है जिक्र जनाब ददन माशुम सबा डॉक्टर दे ददन माशुम सबा इंजीनियर दे ददन माशुम सबा वकील दे और दगा रंगे नूर चुकम शुभ जाते आगे बखबल जो चुकम दे इज्जत बेहतरीन अंदाज की अगबती रवि नो सौ जनाब द माशुमान कदर लाजिम कबूल पकार दी गना एनी हाउ जनाब او چا کر سستون زیرا غلی دی س مشکلات را غلی دی س حادثات را غلی دی س باقیات را غلی دی نو جناب بغیت بوای نیور گیو اپ ہمت دی غوت اس بالکل نبی لین زکہ ہمت بلول سرا اس منی کی گیم اچھی کر تاس ہمت بلای جان مایوس گوی یقینا کور نور خلق بس کی وجنا تاس خو اگید پارا جون گوی اگید پارا خپل زندگی تاس وقف کړی دم نو ڈیفینیٹلی جناب تاس بزان بالکل نمایوس کی وسیدم تاس بزن نو خری تاس با اور او کلی جی خری रहमान दामन रेडियो चार प्लेटफॉर्म नाम दगा प्रोग्राम रवि बजे पूरे शान रवान राजे पदाकों के बगुन कवे कॉल दिला रहे हम एस एम एस दिला रहे हम और दगा नंगे कमेंट्स दिला रहे बहुमा सरा पदा प्रोग्राम की शामिल है कॉलिंग नंबर जमुगा बिल्कुल सिंपल दीजिए 0309-711-8899 सॉरी 0997-310-400 बंदी 0309-711-8899 बंदी कॉल बिल्कुल मुकवे बिल्कुल जिना था सुमाता प्रोग्राम की कॉल्स के कबूल वाड़ी 0997-310-400 बंदी बता सुमाता कॉल्स कवे सही दस 0997-310-400 थ्रू कॉल अगर प्रोग्राम बरखा जुड़ेगी सर कम ची स्पोर्ट्स मैचेस रवान दी कगा फुटबॉल दी कगा क्रिकेट

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात वोरीदली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चिपके तास्ता दरकवलेश

Nous sommes Mayokar comme speaking. Tassohoms Kawe, Tass Oridal Kawe, Otashida Kam Oridal Kawe, Daham Yokar, the Yanitas Kawe, listening Kawe, Daham Yayo action of the Yokar perform Kig, Zahabrikoma, Otasum Aure, and Zahabrikum, Daham Yokisma action perform Kigi, Otasum Yokisma action perform Kujitas, Oridal Kawe, Halkachia, who is not a little Hamkin Udabia, Sortawaichi, Sony Pisohaga, who is come the Nevia Dream Carver Hamkin, among the Sakochi, among the Manhattan Zahabrikoja. Among the Sakargibiagin about Mangadiagi, two types of transitive and transitive of Mangahidil's review. Our basic on the Agin and Basic among regular and irregular, but some details review in a basic among a program, Yakari program, and some missivity like personal issue at the Hagiloji. No Nunchi comes among Parona da come topic, Chibanga Pukira already, Haga Chikam, the helping verb, then helping with us of Zawan Shaya, helping verb, the auxiliary verb, the Tiliki, Aya Pakami, Jumleki, the main verb, and Mutasama, we can Shaya. Zos yokar kuma zoswam chi I am speaking. Nuziki da I chikam di sara am olageda. No am chikam di da zika mung sara helping verb yokisma kari wako. No aya mung sara bia helping verb chikam di mung sara bia nur ham di khum mung sa chi fil hal mung kam pada kam mani nil khabar gori ta munga auxiliary ya helping verb or tawai adi ki paki bia mung sara nur chikam di details sara aga maru verb chikam di aga bia munga bia next kewe inshallah wai khu ta sudaku nazan zihin ke da khabar pri ki gide chikala hum munga de helping verb khabar kaw ya manga the auxiliary verb khabar kaw does basically manga de par use ko chi ay da the main verb help ke aw da manga khai chi ay da action kala she wedi la ko manga kadi je ke da ma khawai ke chi I am speaking me bol raha hu you are listening this is ki ma se kam de I start the sortawai chi the present continuous tense de aw de ki pakki manga I sara am se malo da mang sara am se kam de da mang sara helping verb de basically this is da samada chi you are listening nu ta se ke vi ta se aw ridal ke vin de ki kam de you manga da se chi I you listening nu mang ta exact meaning na razi balki da aga sortawai chi aga phrase ham nu jodi ge ki sama no this is among sa kuzi kam helping verb lagun helping verb sa ki chida the main verb chikam de da gi help ki among ta complete sentence lagi sa da khabar yaad sathi helping verb manga zik use ko bala khabar ji kam de no da manga dir sawat wa di ki baki among sara dir khabar di khud de specific kar chikam ja hum dak kare chi ay da manga sara sentence complete ki di ki baki bal kar manga sada re chi ay da manga tenses ki use ko wa ge tarika ta sala khatar dir sara wambal ji kam de question da par manga use ko wa awal ji kam de no sawat wa possibility the para use ki ki ability the para use ki ki da tool chikam de yo puyo banzu kush kuma tasu da tool ze clear kama kho basically khabar kama ga ko tasma yo takhe velo mak ki aya chamang basically de verb khabar ka wo no verb chikam de damang sa de latin word na ragal de verb na de hagi meaning de word no dasi lafaz chi aya hagam ta mukammal har sawai da da helping verb chikam de ham mang tawai chi aya da action shwe de kada action ki gi kada action bagi no da chi kam de helping verb da mung sara da help kawi aya pa jumla ki chi da mung ta u khai chi kar rawan de kar shwe de au ka kar ba ki gi ya kar shuru shwe de continue de au ka na da kar khatam shwe de bar ki mung khabar kaw ya da kar la shuru ham ne de mung baad ki khabar kaw to basically fail mein hum ye padte hain ki jo hamare paas helping verb hai us pe main thoda sa baat karna chahta hu fir uske baad hum jo hamare paas main wo jo kehte hai kya hai ki helping verb hai usse main jata hu detail ke sath example bhi to sath sath mein taki aap log ko samajh bhi aa jaye تو ہمارے پاس یعنی وہ فعل جو مدد کرتا ہے معاون یا مدد کرنے والا فعل اسے ہم کہہ سکتے ہیں آسان شبدوں میں یعنی وہ فعل جو مین فعل کا جو کام ہو رہا ہے جو کام مطلب جو ہمیں کسی چیز کا کوئی سٹیٹ بتایا میں نے آپ لوگوں کو پھر ہی بتایا ہے کہ جو ورب ہے جو ہمارے پاس فعل ہے وہ ہمارے پاس دو کام کرتا ہے یا تو کوئی ایکشن پرفارم کر رہا ہوگا جملے میں کوئی بندہ یا کوئی بندی یا کچھ ہوا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا یا ہمیں اس کی حالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو سمپل آسان شبدوں میں ہم نے کہا اوکے تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کام کب ہوا ہے یہ کس حالت میں ہے جب یہ ہمارے پاس ہمیں سینٹینس کی کمپلیٹ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر ہم کہیں کہ میں کہوں کہ یعنی آئی اسپیک چلو فی الحال تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر میں ابھی بات کر رہا ہوں میں کچھ ابھی کر رہا ہوں میں ابھی بول رہا ہوں تو میں نے یہاں پر ہیلپنگ وہ لگانے وہ کیا ہے وہ ہے ایم یعنی آئی ایم
आई एम स्पीकिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ. अगर हम दूसरी तरफ देख ली, आप लोग भी कुछ कह रहे हैं, यू आर लिसनिंग. अगर हम बात करें यू लिसनिंग, तो कुछ समझ में आ रहे हैं, लेकिन हमें जो है ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर आ लगेंगे, यू आर लिसनिंग. यहाँ पर एक क्वेश्चन अरेज होता है कि जब हम बात करते हैं कि हम ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, हम इज लगाते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने यू का इस्तेमाल किया. आप लोगों ने इस बात को याद रखना है, हमने इस पे बात हम डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया था. मेरे ख्याल से पर्सनल प्रोनाउन में सेकंड पर्सन जो हमारे पास है, यू जो है ये एक के लिए भी यूज होता है, एंड आर मोर देन टू पीपल, यानी एक के लिए भी यूज होता है और एक से ज्यादा लोग के लिए भी इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पर हम यू के साथ क्या करेंगे, हम आर का इस्तेमाल करेंगे. आप लोगों ने इस बात को जहन में बिठा लेना है. वो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने इस बात को दिमाग के अंदर बिठाना है, ताकि आप लोगों को कभी मुश्किल दरपेश नहीं उसके बारे में. सही है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं. तो सबसे पहले आप लोगों ने इस बात को जहन में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक मददगार फेल है, जो हमारे पास मेन वर्ब है, ये उसका हेल्प करता है. अच्छा, कैसा हेल्प करता है, मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी है कि आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, यू आर लिसनिंग. आप लोग अभी कुछ करे, कंटिन्यू काम हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम डिटेल के साथ देखते हैं. सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जानना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब है क्या. पुख्तों की तबियत हम हेल्पिंग वर्ब भागी तो लिखी आए आप आसान लफ्जों के ना खबर याद साथ हेल्पिंग वर्ब भागी तो आई चिदा मंग सरा द मेन चिकम वर्ब दे धागी मदद कर भी मंग था जुमला कम्प्लीट कर भी दे वक्की काल नमक के विता समंग तकाल कुल शे बिया द 3:30 या द 35 नबाद दे वक्की कम सड़े हम काल के मंग डिस्टर्ब कवाई मैं प्लीज बराई करें. हाँ, नुजा सरदा खबर याद हो साथी हेल्पिंग वर्ब से कम दे द मंग सर मदद कवि दे चिको मेन वर्ब दे धागी मदद कवि और बल से कम ने दामंग सर इस्तेमाल ये पटेंसेस के इस्तेमाल ये अधीन इलावा मंग सर क्वेश्चनिंग के इस्तेमाल ये दिन बाद से कम दे दे उसी पॉसिबिलिटी आए देखिए दे इम्कान भी दे उसी एबिलिटी और ताकत मंग था डिफरेंट मैं मंग गोल डिफरेंट एंगल ना परस्पेक्टिव ना चिकम कम जी को सिंग सिंग इस्तेमाल ये रोदी के चिकम ने मंग सर टोल ना अवल ने चिकम दे हागा मंग सर हेल्पिंग वो चिकम दे आगा दे बी ई बी और ना होगा सदे डिफिनेशन वो हेडिंग वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई ऑक्सिलरी वर्ब ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई ऑक्सिलरी ओ आर आर ब्रेकेट के अवसर मख के आप लोग ब्रेकेट में आप लोगों ने क्या करना है लिखना है एच ई एल पी आई एन जी हेल्पिंग वर्ब auxiliary are helping verb. आप लोगों ने फिर आगे उर्दू में लिखना है मदद कर फेल जो मेन का मदद करता है. तो आसान शब्दों में हम इसे कहते हैं auxiliary are helping verb. सही है, आगे बढ़ते हैं. अब टूवर्ड डिफिनेशन ए एन एन ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई auxiliary वी ई आर बी verb I S S A V E R B verb T H A T that H E L P S helps T H E the M A I N man V E R B verb T O 2 M A K E make A S E N T E N C E sentence C O M P L E T E complete. I repeat it again. An auxiliary verb is a verb that help the main verb to make a sentence complete. I repeat it again. If a person is slacker, they cannot capture easily. So I repeat again. An auxiliary verb is a verb that helps the main verb to make a sentence complete. क्या करता है कि ये मदद करता है. किस चीज का मदद करता है, किस लिए मदद करता है, इसलिए मदद करता है टू मेक अ सेंटेंस कम्प्लीट, ताकि जो जुमला है जो हमारे पास फिक्रा है वो कंप्लीट हो जाए. क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए. एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब
ये क्या करता है, एन एक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब, एक ऐसा फेल है दैट हेल्प, जो मदद करता है द मेन वर्ब का टू मेक अ सेंटेंस कंप्लीट, ताकि जो जुमला है, जो फिक्र है

सिंगुलर नाउन तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह मैंने कहा ही इज फ्लाइंग, अपोलॉजी, वो अकेले नहीं खेल सकता है। ही इज रीडिंग अ बुक, वो क्या करे, वो किताब पढ़ रहा है। ही इज वॉचिंग टीवी, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ वो क्या कहते हैं कि वो टीवी देख रहा है। यानी मतलब ये कि जब हम सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, हम इज लगाएंगे, ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम इसके साथ इज लगाएंगे, और अगर आई हमारे पास हो उसके साथ हम एम लगाएंगे, और इसके अलावा अगर प्लूरल हुआ, वी यू दे हुआ, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हम आर के इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने इसको जहन में बिठा रहे हो। यहाँ पर अगर हम टेंस को हटाते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा कि कब, यानी बात ये है ना, जबरदस्त परफॉर्म करता है एक जुमले में कि हमें बताता है कि काम कब हुआ है, होने वाला है या हुआ है या होगा, अभी हो रहा है, हुआ है या होगा। तो ये हमें कौन बता रहे, ये हमें हेल्पिंग वर्ड ही बता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो हम अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे पास फिर और वो हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो है, अगर हम बात करें तो हमारे पास डू जो है वो हम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किससे पूछते हैं डू यू वर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया। अगर हम यहाँ पर बात करें यू वर्क, तो हमें कुछ समझ में आ रहा है कि आपका काम, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा यू डू, क्या आपने अपना काम कर लिया। अगर हम पास की बात करें यू डिड इट, क्या तुमने कर लिया, यू डिड इट, क्या तुमने कर लिया। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन के लिए यूज होता है। अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी के लिए तो फिर हमारे पास कहना आता है कैन यू डू इट, हम किसी पूछते कैन यू डू इट, क्या आप कर सकते हो, कैन आई डू इट, क्या मैं कर सकता हूं। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास थर्ड नंबर पे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी द थिंग दैट पॉसिबल। फिर हमारे पास एबिलिटी है, अ पर्सन हु हैव द एबिलिटी, मतलब हम डेफिनेशन यूज करते हैं फिर। ओके तो सबसे पहले हमने क्या जाना, हमने आज पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, और हमारे पास टाइम जो बिल्कुल द टाइम इज नियर टू डाई, हमारे पास वक्त है बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि 3:30 तक पहुंचने वाला है। तो आज हमने बस थोड़ा बहुत हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुश्किल था तो मैं नहीं कर सका। चलो मैं पूछते मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब दवाई दामंग सर सकी हेल्पिंग वर्ब मंग तखाई आए यो जुमला ची कम्प्लीट की गई यो जुमला से मंगा जान सरा मुकम्मल हूं ना कि पारो मंगा हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल या वर तम माविन फेल हम वाई अगर मंग लजिम इस्तेमाल हो लगता समाधा हुई चाहे मंग तखाई इट शोज टेंसेस मंग टेंस खाता समाधा हुई चाहे आया मंग कल खबर अकाउ द प्रेजेंट खबर अकाउ नहीं कि पकी मंग बात कंटिन्यू के मंग सर यो कार रवा नहीं कि पकी मंग सी से मारू कि मंग एस एम आर से दाओ मंगा टेंस खरी टेल सर वाई आया हेल्पिंग वर्ब चिकम दे प्रेजेंट की कमी से मालेगी बे प्रेजेंट की चिकम दे मंग सरा यो सिंपल ले आज कंटिन्यूस बे परफेक्ट दे बे परफेक्ट कंटिन्यूस इधर के शाने की बे पास चिकम दे पास सिंपल ले पास कंटिन्यूस दे पास परफेक्ट दे पास परफेक्ट कंटिन्यूस बे चिकम दे फ्यूचर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यू फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दैट वुड यो यो मंग सरा चला जिनो दा हम ता सो खपोई के दा या रे गट्टे में खाली खुद को ना सर या साए हेल्पिंग वर्ब मंगता खाई सखाई मंगता टेंसेस बारे की हम वाई नरे गुण तक शायद हो कार वे रुपये रखोटी था वही रुपये वाला था खुपो तुर पूरा हमारा शांत कार द हेल्पिंग वर्ड हम कैसे ही था। नेक्स्ट सेकंड नाम सर से कैसे क्वेश्चन था समाधा भी चाहे कलमंगा खबर कहू चाहे सिंपल द प्रेजेंट सैंपल खबर से मंगा उन आगाजी के मंग सर गो मंगा दीजिए कि डू भी ऐसे मालो डू डज ही शी इट सिंग नो चिकन दे आई गो मंगा डज इसे मालो वती नहीं रहा चिकन दे प्लूरल वी यू दे चिकन दे के मंगा डू इसे मालो सीधा ना मंगा ब्यावा डिटेल्स पटेंशियल के वाई खुद को ना सर याद साथे चाहे दा मंगा द क्वेश्चन द पर हम इसे मालो बोले शु बस कम दे नेक्स्ट मंग सर जी कम दे पॉसिबिलिटी द पर मंग इसे मालो नु द समादा डिटेल्स रहु चाहे यो कार मंगा कवले शु ना के पर मंग इसे मालो यो कार चिकन दे द یو سړی دی یو ستاکت لري هغه لپاره مونږ استعمال دا ډیفرنٹ مونږ سره استعمال کی دا به دل سره مونږ خوای خود کو نه سر یاد ساتي آیا هیلپینګ ورب چې کوم دی دا سکی دا مدد کوي د چا د مین ورب دا سکی مدد کوي ها تازه مثال لا کومه که زما خبر دا آی ایم سپیکینګ یا سړی دی کوم دی هغه سکی چې آی ایم ریډینګ ابو کا سړی دی کوم دی ریډینګ کوم آی ایم रीडिंग अ बुक जिसको मैं किताब में किताब पढ़ रहा हूँ सही है। तो हमारे पास जो है जो थ्री में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो है बी बी ई बी और अब अभी मेरी वही वो बात जो है वो अभी हो रहा है तो हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ए एम एम कामा फिर उसके बाद आई एस एस फिर उसके बाद इज और इसके साथ फिर कामा लगाने फिर ए आर आर लगाने

नहीं, फिर डब्ल्यू एस वाज और फिर हम कामा, फिर उसके बाद डब्ल्यू आर ई वर, और यहाँ पर आप लोगों ने बी भी लगाने हैं कामा, और यहाँ पर बी बी बिया, फिर उसके बाद आप लोगों ने कामा और फिर बी डब्ल्यू एन बीन लगाना है, फिर बी ई आई एन जी बींग जो है हम पेशे में फिर इस्तेमाल करते हैं, सही है। अब हम बात करते हैं कि हम कंटिन्यूस में इसके इस्तेमाल करते हैं, पेशे वाइज में हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास क्या करता है, स्टेट और कंडीशन हमें इसी चीज की हालत के बारे में बताता है, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि मैंने आप लोगों की मिसालें दी, आई एम स्टडिंग में पढ़ रहा हूँ, शी इज कुकिंग वो खाना पका रही है, दे आर प्लाइंग क्रिकेट वो क्रिकेट खेल रही है, ही वॉज स्लीपिंग वो सो रहा था। यहाँ पर अगर हम पास की बात कर रहे हैं तो हम सिंगुलर के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट, या सिंगुलर के लिए हम वॉज इस्तेमाल करेंगे, वी यू दे, और प्लूरल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम वर इस्तेमाल करेंगे। तो वो यहाँ पर हम किसकी बात करें, ही वॉज स्लीपिंग वो क्या है, सो रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था। या हम अब हम और मिसाल लेता हूं कि वो क्या कहते हैं, ही वॉज स्लीपिंग वो सो रहा था, एंड द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, काम मुकम्मल किया गया था। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बी आ गया। और अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते, हमारे पास हैव हैज एंड हैड है, हम इसे बात करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जाते हैं कि आपके मैसेज, आप लोगों के मैसेज आए हैं, अगर आए हैं तो वेरी गुड, नहीं आए हैं तो फिर से हम वापस चले जाते हैं। ओके जी,

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: शुक्रिया आपने रेडियो अमन एफएम
3: रेडियो अमन रेडियो अमन रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का एक नई दुनिया बनाने ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का जज्बा है आपको बाखबर रखने का जज्बा है आपको बाखबर रखने एक अज्म अपनों को पास लाने का बिछड़ों को फिर से मिलाने का एक जज्बा आपको खुश रखने का आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा
4: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात हमारे साथ रहिएगा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: ग्रानो रिदुन को द अमन रेडियो FM 88.4 बटाग्राम दे दा वक्तासो जमुंगा इस्लामी नशरियात आवरई।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।